गया अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आज ट्रैफिक सिग्नल किस रंग का मिला। कितनी बार ट्रैफिक सिग्नल ने अपनी लाल आंखें दिखाकर आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले रोका। कितनी बार ऐसा हुआ कि वो आपको हरे रंग का ही दिखा और आप फटाफट रास्ता आगे बढ़ते गए, पार करते गए, या कब कब हुआ जब उसने कहा भाई थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ले, अब मैं येलो हूँ, रेड होने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी ज्यादा बातें ट्रैफिक सिग्नल की क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज है अंतरराष्ट्रीय यातायात प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। गपशप करेंगे ट्रैफिक लाइट के इशारों के बारे में। बाबू समझो इशारे। है हमारा नंबर, जुड़ सकते हैं आप दिल से दिल तक। 10:30 से हमारी टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुल जाएंगी। फिलहाल जान लेते हैं मौसम का हाल। आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश जैसे सुबह से हो रही है बिल्कुल वैसे ही पूरे दिन होते रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की बात कही है स्थानीय मौसम विभाग ने। और अगर बात करें हम कल गुजरे कल की, तो 31.7 यानी कि सामान्य से 0.3 डिग्री कम रहा अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 26.7 से 0.2 डिग्री अधिक रहा। उच्च आर्द्रता 99% और निम्न आर्द्रता 80% रही।

0: जब बात करेंगे हम आज के दिन की, तो सबसे पहले जिक्र होगा ट्रैफिक लाइट डे, इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। हर वर्ष 5 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और यातायात नियमों के पालन का संदेश देता है। 5 अगस्त 1914 को अमेरिका के ओहायो राज्य के क्लीवलैंड शहर में पहला विद्युत यातायात सिग्नल लगाया गया था, जिसके स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। लाल, पीली और हरी बत्तियां क्रमशः रुकने, सावधान रहने और आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। यातायात संकेतों का पालन करने से दुर्घटना में कमी आती है और सड़कें अधिक सुरक्षित बनती हैं। यह दिवस केवल एक दिवस नहीं, बल्कि ये दिन प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार और अनुशासित यातायात व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा भी देता है। और जब बात हो ट्रैफिक लाइट्स की, तो वहाँ हेलमेट का जिक्र जरूरी है। अगर आप दुपहिया वाहनों पर सफर कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको ही हेलमेट नहीं पहनना है, अपने पिलियन राइडर को भी आप हेलमेट पहनाकर ही अपने दुपहिया वाहन पर बैठने की इजाजत दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ आज के दिन को हम याद करेंगे अनुच्छेद 370 की निरसन दिवस के रूप में, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। भारतीय संविधान के उस ऐतिहासिक निर्णय को दर्शाता है जिसके तहत 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। यह निर्णय भारत सरकार द्वारा संसद में पारित प्रस्ताव और संबंधित संवैधानिक आदेशों के माध्यम से लागू किया गया। इसके साथ ही अनुच्छेद 35A भी प्रभावहीन हो गया तथा जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। ये तो हुई बातें
1: आज के दिन।
0: सुन लेते हैं अभिजीत और साधना सरगम की आवाजों में इस गीत को, फिर चर्चा होगी आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की, जिन्हें हम व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं।

बात करें अगर आज के दिन जन्मे लोगों की, तो वर्ष 1890 में दत्तो वामन पोतदार मराठी साहित्यकार एवं प्रसिद्ध समाज सेवी का हुआ था जन्म। भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1901 में। प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1915 में। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ था आज के दिन वर्ष 1930 में। भारतीय रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री उत्तरा बावकर का जन्म हुआ था वर्ष 1944 में। हिंदी के प्रसिद्ध कवि वीरेन डंगवाल का जन्म हुआ था वर्ष 1947 में। भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का जन्म आज ही के दिन हुआ था वर्ष 1969 में। भारत की महिला पहलवानों में शामिल अंशु मल्लिक का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 2001। वर्ष 1987 में जन्म हुआ था अभिनेत्री जिनेलिया डिसूजा का। वर्ष 1980 में भारतीय अभिनेता वत्सल सेठ का और वर्ष 1975 में भारतीय अभिनेत्री काजोल का जन्म हुआ था आज ही के दिन, यानी कि 5 अगस्त के दिन। जी हाँ, टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुल चुकी हैं और आज हम बात करेंगे कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में ट्रैफिक सिग्नल की, जिसमें मुख्य रूप से बात शामिल होगी क्या आप जब पैदल चलते हैं तो उन 3 रंग बिरंगी बत्तियों की ओर होती है आपकी नजर, या कि आप होते हैं भीड़ का हिस्सा, पूरी भीड़ रुकी तो मैं भी रुका, भीड़ चली तो मैं भी चला। क्या करते हैं आप, क्या है महत्व आपके जीवन में ट्रैफिक लाइट्स का, किस तरह करते हैं आप इनका इस्तेमाल? फिलहाल कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, आवाज के उस पार आपके फोन कॉल्स और नॉन स्टॉप गपशप।

0: यार तुम। आज के नॉनस्टॉप गपशप के हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, सुब्रतो मॉल हैं गंगाधरपुर से। स्वागत है आपका सुब्रतो दा कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। हेलो, फोन का कनेक्शन कट चुका है। कोई बात नहीं, सुब्रतो माल थे हमारे साथ और उन्होंने बताया कि वो ट्रैफिक सिग्नल को बहुत ही शिद्दत से फॉलो करते हैं और अगर कभी उन्हें किसी क्रॉसिंग पे दिख जाए कोई बुजुर्ग तो उंगली थाम कर उन्हें बताते हैं, समझाते हैं, संभालते हैं किस तरह से जब इशारा करे ये ट्रैफिक सिग्नल कि अब हमें पार करनी है सड़क तो ही हम सड़क पार करें। आपके पास भी है अगर हरी पीली और लाल बत्तियों से जुड़ी कोई कहानी तो जुड़ सकते हैं आप दिल से दिल तक। 2213-1341 है हमारा नंबर। फिलहाल ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम कह रहा है मुझसे कि मैं आप सभी तक पहुंचा दूं
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: जब हम सफलतापूर्वक किसी काम को करते हैं तो हमारे चेहरे पर आ जाती है एक मोहक मुस्कान और मुस्कान अगर ज्यादा बड़ी हो तो दिख जाते हैं हमारे दांत। दांत अगर चमकीले हो तो क्या बात है। तो आइए आज आपको दे दूं कुछ नुस्खे, घरेलू नुस्खे अपने दांतों को चमकदार बनाने के, अपने मुस्कान को मोहक बनाने के। चुटकी भर बेकिंग सोडा टूथपेस्ट या पानी में मिलाकर हफ्ते में एक या दो बार हल्के हाथों से ब्रश करें। यह दांतों की ऊपरी गंदगी साफ करता है। और हफ्ते में दो से तीन बार कोई भी तेल, नारियल का तेल भी हो सकता है और सरसों का तेल भी हो सकता है, लेकर अपने मसूड़ों की हल्की हल्की मालिश करें क्योंकि स्वस्थ मसूड़े ही हमारे दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। नींबू या संतरे के छिलके के अंदरूनी हिस्से को दांतों पर हल्के से रगड़ें और तुरंत पानी से कुल्ला कर लें। ये भी हमारे दांतों को बनाते हैं चमकदार। लेकिन याद रहे कि इन नुस्खों को बहुत जोर से या रोजाना इस्तेमाल न करें।

0: इससे दांतों की परत यानी कि इनेमल कमजोर हो सकती है। अगर सावधानी पूर्वक हम इन घरेलू नुस्खों को आजमाएं तो निश्चित तौर पर ये कारगर साबित होते हैं। आजमाया नुस्खा बताया है आपको, आप भी आजमा कर देखें।
1: एक चुटकी नुस्खे।

चांद शर्मा कर बदली में छुप गया और हमारे जो अगले कॉलर फ्रेंड हैं शौबिक आ चुके हैं स्टूडियो में। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो लगता है शौबिक साहा से भी सरकार कस्बा से जुड़े थे हमसे और बातें हुई, लंबी बातें हुई, लेकिन ऑन एयर नहीं आ पाए, कोई टेक्निकल इशू लग रहा है। लेकिन लेकिन लेकिन उनसे जो बात हुई, उन बातों के दरमियान उन्होंने बताया कि कभी कभी उनके अंदर की जो रेखा है वो जागृत हो जाती है, उन्हें याद आ जाता है खूबसूरत फिल्म का वो गीत, सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो, और वो इनकलाब जिंदाबाद करते हुए ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी उनकी अंतरात्मा उन्हें पुकारती है, कहती है बस कर शौबिक, गलत कर रहा है तू, और फिर वो रोक लेते हैं खुद को। उनका भी यही मानना है कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, इनसे हम सुरक्षित रहेंगे, और जब हम सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित होगा, देश सुरक्षित होगा, विश्व सुरक्षित होगा। और चर्चा जो शौबिक के साथ हुई, अगर ये कॉल डिस्कनेक्ट ना हुई होती तो हम दोनों साथ मिलकर गपशप करते, लेकिन अब मैं आप पर छोड़े देती हूँ कि आपने अपने इस शहर कोलकाता में कितने रंगों के नंबर प्लेट्स अभी तक देखे हैं। गाड़ियों के नंबर प्लेट्स की अगर मैं बात करूँ तो किन किन रंगों के नंबर प्लेट्स पर पड़ी है आपकी नजर? मैंने तो अभी तक सफेद, पीला, काला, हरा, लाल और नीले रंग की नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां अपने शहर कोलकाता में देखी हैं। एक गाड़ी और जो मुझे कभी कभी दिख जाती है, उस पर बना हुआ है राष्ट्रीय प्रतीक और गोल्डन कलर नंबर प्लेट। कौन सी है ये गाड़ियां? बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी कि किस नंबर प्लेट का क्या मतलब है, क्योंकि ये नंबर प्लेट बताती हैं कि ये गाड़ियां किस कैटेगरी में हैं, किसकी हैं। अगर आपको भी है जानकारी या आपने इससे अलग कुछ नंबर प्लेट्स के कलर्स अपने शहर में देखे हैं तो बिल्कुल आप ये जानकारी साझा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय बचा हुआ है 10:47 और 11 बजे तक चलने वाला है ये कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। फिलहाल अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा।

कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप अपने आखिरी मोड़ तक। कार्यक्रम में आज हमने जितने भी गीत सुने सभी फिल्माए गए थे अभिनेत्री काजोल। और जब बात हुई है रंगों की, तो आप सब जानते हैं कि सफेद नंबर प्लेट यानी कि प्राइवेट व्हीकल निजी वाहन, पीली प्लेट व्यावसायिक वाहन कमर्शियल टैक्सी, काली प्लेट पीले अक्षरों वाली स्वचलित किराया वाहन, ऐसी गाड़ियां जिसे किराए पर लिया जाता है लेकिन उसे चलाता है एक प्राइवेट लाइसेंस होल्डर चालक। हरी प्लेट सब जानते हैं इलेक्ट्रिक वाहन, और लाल प्लेट अस्थाई पंजीकरण टेम्पररी नंबर को डिनोट करता है। शहर कोलकाता में दिखने वाली या किसी भी शहर में दिखने वाली नीली प्लेट सफेद अक्षर विदेशी दूतावास राजनयिक वाहन, एम्बेसी की जो गाड़ियां होती हैं उन पर लगा होता है नीला प्लेट, और सुनहले रंग का प्लेट जिस पर राष्ट्रीय प्रतीक वाली प्लेट लगी होती है वो गाड़ी होती है राष्ट्रपति या राज्यपाल की। महामहिम की गाड़ी का नंबर प्लेट सुनहले रंग का होता है। ये तो बात हो गई गाड़ियों की, गाड़ियों के नंबर प्लेट्स के कलर्स की। आज हम बात कर रहे थे उन तीन रंगों की, हरा, पीला और लाल। बिल्कुल, आप किसी भी वाहन से हो, दुपहिया वाहन से हो या कि आप त्रिचक्रीय वाहन ट्राई व्हील ऑटो रिक्शा से हो या कि आप चल रहे हो पैदल, अपनी कार में हो, किसी भी तरह से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल फॉलो करें। क्योंकि ये ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए बने हैं, आपके लिए बने हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं। तो आज के इस कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में कीजिए वादा कि आप हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे और अपने अपनों को भी ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी वादे के साथ आज के लिए बस इतना ही होगी आपसे मुलाकात कल सुबह इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। चलते चलते आप सभी के लिए आशा भोसले की आवाज़, काजोल की पहली फिल्म बेखुदी से नमस्कार।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर।
1: कार्यक्रम तीन का दरगाह, मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ 3:04 स्टूडियो की घड़ी में वक्त। और दोस्तों, आज तीन का दरगाह कार्यक्रम में हम आपके दोपहर को थोड़ा और मज़ेदार तरकेदार बनाने के लिए लेके आए हैं बेहद खूबसूरत खूबसूरत गीत। और आज है काजोल का जन्मदिन, तो रुक करते हैं पहले गीत की ओर, जिस फिल्म में उनकी एक्टिंग हमें देखने को मिली।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति

0: 3:16 स्टूडियो की घड़ी में वक्त और परियोजना प्रस्तुति में आज हम बात करेंगे पीएम आवास योजना की। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सुन रहे हैं आप परियोजना प्रस्तुति, मैं श्रुति स्मिता आप सबके साथ। और आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना की जिसने लाखों परिवार को अपने घर के सपने को साकार करने में मदद की। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों, हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास अपना सुरक्षित और पक्का घर हो। इसी सोच के साथ वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर वर्ग हैं, निम्न आय वर्ग हैं और मध्य आय वर्ग हैं, उन परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध करवाना। यह योजना दो भागों में संचालित की जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत कच्चे तथा उर्जर मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता की प्रदान की जाती है। वहीं जो लोग शहर क्षेत्र में रहते हैं, वहां लाभार्थियों के घर बनाने, खरीदने या पुराने घर के जो है विस्तार के लिए भी विभिन्न प्रकार की सहायता और कुछ क्षेत्रों में जो है कुछ श्रेणियों में गृह ऋण या ब्याज सब्सिडी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं बल्कि लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है। नए घरों में स्वच्छ शौचालय, बिजली, पेयजल और स्वच्छ इंजन जैसे मूलभूत सुविधाओं को भी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यदि कोई पात्र इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो वह अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, नगर निकाय या फिर संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदन करने के समय पात्रता और आवश्यक जो है दस्तावेज की जांच भी होती है, ये भी देख लें। प्रिय श्रोताओं, अगर आप भी केवल चार दीवारी नहीं होते, अपना घर होता है तो वो सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव होती है। अगर आप भी ऐसे किसी अवसर को ढूंढ रहे हैं या फिर किसी योजना का इंतज़ार कर रहे थे तो प्लीज़ आप भी इस योजना का पूरी तरह से जो है लाभ उठा सकते हैं। इस जानकारी के साथ मुझे दीजिए परियोजना प्रस्तुति से इजाज़त।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
0: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता
2: जी।
0: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया, कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
0: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
2: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
0: जी, बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देखकर ही उठते हैं।
2: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
0: जी वो तो है,
2: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है
2: जी,
0: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे
2: जी।
0: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
2: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए अजीत जी क्या होगा।
0: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
2: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं
0: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
2: देखते देखते एक घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
0: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
2: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
0: और नोटिफिकेशन भी बंद।
2: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा।
0: क्या बोलेगा?
2: मुझे भी देख लो।
0: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
2: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
0: वो कैसे?
2: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहाँ आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं, इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
0: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं
2: जी।
0: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
2: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
0: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
2: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
0: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें।

0: और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
1: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
0: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
1: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
1: नई जानकारी के साथ।
0: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब।
5: महाराज,
4: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
5: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
4: शर्त ये है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
5: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ, आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज, इनकी तो पूछिए मत। अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
6: चल चल चल चल जल्दी कर, जल्दी कर, रोक रोक, गेंद रोक, गेंद रोक, रोक। ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
7: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
6: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
2: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
8: आज खेल में बड़ा मजा,
9: बहुत मजा आ गया। क्या गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
10: हाँ, बस गोल हो गया।
2: दिल खुश हो गया। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
11: कहां फंस गई?
12: ए, इधर क्या देख रहे हो?
11: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
13: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
12: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
14: चलो चलो चलो
11: भाई, निकलो। लेकिन
13: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
2: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
15: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
11: ठीक है,
15: कोशिश करते
11: हैं।
2: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
11: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
15: जी बाबा।
11: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
15: तो क्या इनाम देते हो?
11: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
2: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है,

0: राज दरबार सजाया गया।
1: भाई पूरा एक महीना हो गया है। आज फैसला हो।
2: तुम्हें क्या लगता है
3: महाराज आ रहे हैं?
1: अरे अरे
2: सुजान सिंह जी भी आ गए।
0: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
4: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ।
5: बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत बहुत बहुत।
4: जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
1: सही बात है।
4: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
1: बिल्कुल सही कहा,
4: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
0: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
1: उनका अच्छा इंसान हमेशा सही काम करेगा।
0: भले व्यक्ति और देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ साह को बधाई दे रहे थे।
5: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत खूब चुनाव किया।
6: महाराज की
7: जय हो।
6: महाराज की
7: जय हो।
6: महाराज की
7: जय हो।
6: महाराज की
7: जय हो।
0: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
8: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
9: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
10: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

0: कर जाता। मैं हूँ काला कौवा, मैं हूँ काला कौवा।
1: एक दिन कौवे को भूख लगी, वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
0: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
1: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
0: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
1: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
0: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
0: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम हमारी चिंता न करो।
1: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा, जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
0: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो

0: इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
1: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
2: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
0: चूहे भाई, चूहे भाई,
3: क्या
0: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है।
3: कहाँ है मेरा मित्र, मुझे अभी उसके पास ले चलो।
0: चूहे भाई वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है, उसके साथ ही कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई उनके पास चले, मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
0: हाँ हाँ चलो
3: चलो चलो कौवे भाई
0: चलो, चलो, चलो, चलो, चलो।
2: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुँचे।
1: चूहे भाई जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो, शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो जल्दी जल्दी।
2: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया, फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया, कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: साथ-साथ।
1: सात बज के चार मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त, मैं श्रुतिश्मिता आप सबके साथ और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम चार लोग। आज बुधवार, आज की शाम हम साथ साथ, और आज साथ साथ में हम सुनेंगे किनके साथ के बारे में, ये भी बता दूँ आपको। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे मशहूर बेहतरीन जोड़ी काजोल और शाहरुख खान की। भैया आज काजोल का जन्मदिन है तो उन्हें तो हमें कार्यक्रम में शामिल करवाना ही था। अब उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में किसके साथ अच्छी लगती है? भाई मेरे हिसाब से तो ये शाहरुख खान ही हैं जिनके साथ काजोल की जोड़ी सबसे बेहतरीन लगती है। अगर आप बात करें तो इनकी जो फिल्मों में जोड़ी है वो सीधे दिल तक उतरती है और लगता है कि इनसे कुछ खास रिश्ता है। और ऐसे में आज के दिन, आज की शाम जोड़ी के हम साथ साथ में जोड़ी होगी शाहरुख खान और काजोल की। और चलिए रुक करते हैं पहले गीत की ओर।

सीकर फिल्म से विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में कार्यक्रम का पहला गीत सुन रही है साथ ही 107.8 एफएम रेनबो दिल तक।

आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो छायालोक। छायालोक में आज हम बात कर रहे हैं हम साथ साथ में बॉलीवुड की उस जोड़ी की जिसने प्यार को सिर्फ पर्दे पर नहीं निभाया बल्कि दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए बसा दिया। जी हाँ, बातें हो रही हैं शाहरुख खान और काजोल की। इन दोनों ने साथ में जितने भी फिल्में की लगभग हर फिल्म यादगार बन गई। इनकी केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक लगी कि लोग इन्हें असल जिंदगी की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से गिनने लगे, जबकि वास्तविक जीवन में इन दोनों ने अपने अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जिया है जी रहे हैं। और लेकिन बड़े पर्दे पर इनके किरदार आज भी रोमांस की मिसाल बन गए हैं। आज भी जो है बेस्ट जोड़ी माना जाता है बॉलीवुड की फिल्मों के लिए। क्यों ना माना जाए, ये कोई भी फिल्म जो साथ में करते हैं वो मानो हमारे दिल में बस जाता है।

याद है ना सिमरन और राज की जोड़ी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि इस बेहतरीन जोड़ी ने जो है हम सबके दिलों में आज तक राज किया है।

7:27 और गेरुआ रंग की बात हुई थी और जो है नारंगी अलर्ट आ गया। अब ये तो नहीं चाहा था लेकिन आगे आप क्या कर सकते हैं। अलर्ट कुछ यूँ है कि पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पश्चिम बर्धमान, पूर्वी बर्धमान, पूर्व मिदनापुर, हुगली, बीरभूम, पश्चिम मिदनापुर और हावड़ा के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटे के अंदर जो है मध्यम के या फिर जोर से बारिश हो सकती है। गरज के साथ, बिजली के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। साथ में जो है 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की भी संभावना है। और ये जो अलर्ट है ये हमें मिला है, हमारे टीम को मिला है 6:45 के आसपास। तो अगले 2-3 घंटे मतलब 7:30, 8:30 मतलब ये जो टाइम है ना, आपको इस वक्त कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ के जो है आकाशवाणी पे प्रोग्राम सुनिए, 107 AIR FM रेनबो पे आप छायालोक सुनिए, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि 8 बजे तक तो मैं आपको सुनवाऊंगी शाहरुख खान और काजोल के जोड़ी के प्यारे प्यारे गीत। और मैं श्योर हूँ कि आप सबको ये गीत पसंद है। लेकिन अगर अगर अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो बिल्कुल अपने सभी तरह से प्रिकॉशन लेके निकले, रेनकोट लेके निकले, छतरी लेकर निकले और सावधानी के साथ निकले। अगर कहीं रुक सके तो बिल्कुल रुक जाए, अगर आप घर के बाहर हैं तो। नोट के साथ रुक करते हैं अगली गीत की ओर, क्योंकि बातों के साथ साथ गीतों का सिलसिला भी रुकना नहीं चाहिए, क्यों है ना।

7:36 स्टूडियो की घड़ी में वक्त है। मैं सुजेश्वता आप सबके साथ वन ऑफ एवरीथिंग आई एम एंड रेनबो दिल से दिल तक पर सुन रहे हैं कार्यक्रम चालोक हम साथ साथ। और आज बातें हो रही हैं शाहरुख खान और काजोल की। तो अगर बात करें इनके फिल्मों की तो इन्होंने साथ में जो है कई फिल्में की। बाजीगर से शुरू हुई इनकी जो है फिल्म की जोड़ी और दिलवाले तक पहुंच गई और बीच में एक लंबा सफर लेकिन बेहतरीन फिल्में खूबसूरत यादें।

कार्यक्रम हम साथ साथ, मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ बातें हो रही हैं काजोल और शाहरुख की। तो कुछ कुछ होता है सुना आपने इस गीत को उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। और अगर इनकी जोड़ी की बात करें तो इनमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी सहज दोस्ती कैमरे के सामने और पीछे, एक दूसरे को जो है बेहद सहज नज़र से दिखते हैं। और जो है शायद यही वजह है कि उनकी रोमांटिक दृश्य भी बनावटी नहीं लगती और सीधे दिल तक पहुँचती है।

दोस्तों कुछ जोड़ियाँ होती हैं जो सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि यादों में भी बस जाती हैं। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी कुछ ऐसी ही है। हर पीढ़ी को अपना भरपूर प्यार दिया उन्होंने। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी उनकी ऐसी ही बेहतरीन फिल्में हमारे साथ होंगी और हमें और भी उन्हें साथ में देखने का मौका मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ ढेर सारी मुस्कुराहट के साथ छोड़ देती हूँ आपको, इजाज़त लेती हूँ आपसे। सुनते रहिए, साथ रहिए 107.8 FM, ट्रेन पर दिल से दिल तक।

यादें इस आखिरी गीत के साथ प्यार तो होना ही था, फिल्म के साथ छोड़ जाऊंगी आपको। और ये फिल्म उनके रियल लाइफ जोड़ी अजय देवगन के साथ ही, याद रहे।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लो, 107 FM।

आठ बजकर 9 मिनट आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग पूनम के संग ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक, और हमारा और आपका साथ बना रहेगा अगले 9 बजे तक। तो बिल्कुल इधर उधर जाइए लेकिन अपने मोबाइल सेट के साथ घूमते फिरते गुनगुनाते मुस्कुराते हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

बज कर 14 मिनट और दुआ है कैलाश खेर और सुखविंदर की खूबसूरत आवाज़ में आपने सुना, और उसके पहले आपने जो नगमा सुना था फिल्म चमेली से। अब आप सबको लग रहा होगा मैं पीछे क्यों जा रही हूँ, पीछे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अभी बात पीछे जाने की नहीं है बल्कि आप चारों तरफ बस वही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जी हाँ, झमाझम बारिश, और क्या। और बारिश कुछ इस तरह की हो चुकी है कि अब लोगों को लग रहा है कि बस थोड़ा सा थम जाओ, लेकिन अब जो बारिश है ना उसका मूड बिल्कुल बदल चुका है, अब वो थमने वाली तो बिल्कुल नहीं है। मुझे याद है कि जब बारिश नहीं हो रही थी उस वक्त मैं लगातार ये जैकपॉट का एक गाना था, बारिश हो जाए इस तरह का कुछ, और मुझे लगता है वो गाना सुनकर बारिश इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि बस अब वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बातें और भी हैं, होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि बारिश की बात हो गई है तो एक खूबसूरत सा नगमा तो बनता है। हाँ, मुझे जैकपॉट का वो गाना भी याद आ गया, कभी जो बादल बरसे, और अभी जो बादल बरसे तो बस अब लोगों को रोना सा आ रहा है। तो चलिए रोना धोना बंद करते हैं और एक खूबसूरत से नगमे की तरफ बढ़ते हैं। सुनते रहिए, साथ रहिए और अगले 9 बजे तक हमारे साथ गुनगुनाते मुस्कुराते यूं ही बने रहिए।

बारिश का मौसम यानी कि मॉनसून सिर्फ एक सीजन है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये भावनाओं, रोमांस और साथ ही साथ त्योहार का सा एक एहसास है। और जब बात बारिश के इस जादुई माहौल की आती है ना, तो इंडियन सिनेमा यानी कि बॉलीवुड का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। बारिश और बॉलीवुड का ये जो रिश्ता है ना, दशकों पुराना है और साथ ही साथ बेहद गहरा भी। और भी बातें हैं, साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

8:32 और जब भी बारिश की बात होती है ना, तो बॉलीवुड में उसे प्रेम कह सकते हैं, प्यार कह सकते हैं, रोमांस कह सकते हैं, इन सब से जोड़ दिया जाता है। और जब स्क्रीन पर बारिश होती है ना, तो उस समय इतने खूबसूरत नगमे निकल कर बाहर आते हैं, और कई सारे तो मैं आप सब तक पहुंचा भी चुकी हूँ। कभी बारिश के दौरान अचानक एक ही छतरी के नीचे एक्टर एक्ट्रेस आ जाते हैं, फिर भीगते हुए कोई खूबसूरत सा नगमा निकल आता है। और ये जो आइडिया है ना, मुझे लगता है कि शायद ही कभी फेल हुआ हो। तो बॉलीवुड की सबसे पुरानी और रोमांटिक फिल्मों का क्लासिक सीन रहा है, और कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो इस सीन के लिए मैं ऐसी ही बात कहूँगी। वैसे खूबसूरत बातों के बाद खूबसूरत सा नगमा बहुत कॉमन बात है, तो फटाफट पहुंचाई देती हूँ आप सब तक। सुनते रहिए, साथ रहिए।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

8:43। बॉलीवुड में बारिश केवल रोमांस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भावनाओं के हर रंग को

उभारने का काम करती है। जब पहली बारिश होती है ना, तो गांव या शहर की गलियों में बच्चों का नाचना कूदना, लड़कियों का सावन के झूले डालना और किसानों का चहकना फिल्मों में बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया जाता है, और इतनी खूबसूरती से दिखाया जाता है कि ऐसा लगता है कि बस उस सीन में हम सब भी मौजूद हों और उस बारिश का आनंद उठाएं। और ऐसा ही एक गाना आप सबके साथ मैं साझा करना चाहती हूँ, तो सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

8:54 और बारिश की बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे पहलुओं पर भी बातें हुई, रोमांस की बात हुई, झूले की बात हुई, सावन की बात हुई, और जो बातें नहीं हुई वो सारी की सारी बातें जब खूबसूरत ये जो गाने हैं ना उन्होंने कह दिया। और अब भी थोड़ी बहुत बात जो बाकी है वो ये गाना कह देगा, क्योंकि अगर ये गाना मैंने आप सब तक नहीं पहुँचाया ना तो सारी की सारी बात धरी की धरी रह जाएगी। तो फटाफट आप सब तक पहुंचा देती हूँ, सुनते रहिए, साथ रहिए।

8:58 और अब पूनम के जाने का समय है एकदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई, टाटा बाय बाय।

रामेंद्र ने दुवार खापे खाने खाने घरे मानो जाए जाए बुझी आज खुशी आज श्रावणे रामेंद्र।